0: नुआ दिया है एक मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम मगरिब नमाज वक्त।
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: सा से बाय लवता की नुनी में वाहक तके ए वाहक ता मिहारु आ अडका आ रूह काय ए फोरिया ए जोश किंगुस्तनी मुलिं एहिं दुनिया का
1: दिवाली ऐसा क्या वाइट है तू जाऊँ उठना बिठना लाऊँ ये की तू तेरे भाई के राड़े नहीं देखा तू इधर कच्चे तू
0: हाँ वो अधे रिमिक्स की बदले नो एक हमको लव एक निस्ते आ देरु में को में हो मत वही के मिंदरु दे जहार रिपीट अंगार दो हुगेरे दिहे जहार अधे बुद्ध दो हुगेरे बार जहार
2: नॉक नॉक तेरा बाप क्या
3: Version 2.0
4: Version 2.0
3: Divay FM Nuwadhi Eke Megahertz Divay Nga Monifu Efilwa Dhe Numuga Abadwes Divay FM